0: क्या आप सही थे?
1: चला सही थे।
0: Please show the other side if you are my friend of
1: yours. The other side if you copy.